रहे हाथ या के वहाँ या सब बाहर जीवो सन लगे समाज से जिस लोट मैं तो राजा थी जा मेरे साथ मैं तो राजा